பரிசோ கா கார்வா வித் ஆர்ஜி அதனான் ஒனேம் சியம் 90.8 FM. कभी कभी जिंदगी एकदम थम जाती है, सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना लोग, ना बातें, ना खुद का चेहरा। आज की कहानी है आयुष की, एक 25 साल का लड़का जो हमेशा सबको हंसाता रहता था पर खुद अंदर ही अंदर चुपचाप टूट रहा था। सब नोटिस करते थे कि आयुष बदल गया है, लेकिन किसी ने पूरा पूछा नहीं, उसने भी किसी को कुछ बताया नहीं, बस थक गया हो कहकर मुस्कुराता रहता। लेकिन एक दिन जब उसने अपने डायरी में लिखा, शायद मुझे किसी से बात करनी चाहिए, वहीं से कहानी बदली। उसने पहली बार अपने कॉलेज के काउंसलर से बात की, पहली बार अपने दोस्तों को अपना दर्द के बारे में बताया, और सबने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, न जज किया, न ज्ञान दिया, बस साथ दिया। थोड़ा थोड़ा करके आयुष ने लिखना शुरू किया, फिर वॉक पे जाना, और एक साल बाद आज आयुष एक एनजीओ के साथ काम करता है, उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। डिप्रेशन एक अंधेरा है, पर हर अंधेरे में एक छोटी रोशनी होती है, बस जरूरत होती है उस रोशनी तक हाथ बढ़ाने की। अगर आप या आपका कोई अपना ऐसे फेस से गुजर रहा है तो याद रखिएगा, बात करना जरूरी नहीं होता, पहला कदम उठाना जरूरी होता है, के बाद बात करना भी जरूरी होता है। क्या पता आपका भी दोस्त किसी ऐसी चीज से गुजर रहा हो तो उससे बात करके देखिएगा, पूछिएगा कि क्या हुआ। सबसे पहले बताएगा, कुछ नहीं यार, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उस बढ़िया के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है, समझिएगा और सुनते रहिएगा। किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी लाइफ, क्योंकि हेल्दी रहोगे तो वेल्दी रहोगे। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम सब ना तो अपनी बाइक या कार की रेगुलर सर्विस तो करते हैं ना, सभी लोग करते होंगे। थोड़ी सी आवाज आए तो मैकेनिक के पास जाते हैं, लेकिन एक सवाल है, अपनी बॉडी की सर्विसिंग आखिर कब करोगे आप, और आखिरी बार कब की थी, कुछ याद है? एज अगर आपकी 30 साल की एज है तो उसके बाद हमारी बॉडी धीरे धीरे बदलना शुरू कर देती है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ चीजें बिना किसी सिम्टम्स के भी बढ़ सकती है, जिसे ब्लड प्रेशर, कैलोरीज और ब्लड शुगर। और दिक्कत ये है कि कई बार इनका पता तब चलता है जब प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी होती है, इसलिए डॉक्टर रेगुलर हेल्थ चेकअप की सलाह देते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेकअप और बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही खत्म कर देती है। आजकल हम फिटनेस एप्स में स्टेप्स काउंट करते हैं, कैलोरीज ट्रैक करते हैं, लेकिन अपने हेल्थ नंबर्स, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल का पता ही नहीं होता है हमें। और दोस्तों, एक खास बात की हेल्थ चेकअप करवाना, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बीमार है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि अपनी सेहत को लेकर आप सीरियस है। अगर आप 30 प्लस हो गए तो इस साल एक बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर करवाएगा, क्योंकि सेहत की असली जीत तो समय पर जांच करने में है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और याद रखिए, आज का एक हेल्थ चेकअप कल की बड़ी परेशानी को रोक सकता है। स्टे ट्यून।

0: मेंटल हेल्थ ठीक रखिए भाई, और ओवर थिंकिंग को भी कम रखिए। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। तो इसी पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगांवकर मैम, HOD ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट MGM यूनिवर्सिटी। सो मैम, ओवर थिंकिंग पर हम बात कर रहे हैं, तो ये कम करने के लिए कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी हैबिट्स बताइए।
1: सबसे पहली हैबिट तो है टाइम पर सोना और टाइम पर जगना, है ना, वही होना चाहिए। वो हमारे हाथ में है, लेकिन लाइक वी डिस्कस्ड कि हम करते नहीं हैं जो सिंपल चीज़ें हैं। तो सबसे पहला टिप है कि आपका स्लीपिंग टाइम फिक्स चाहिए एंड वेकअप टाइम फिक्स चाहिए, एक स्केड्यूल बनना चाहिए। सेकेंड चीज़ है हमारी फिजिकल मूवमेंट रोज़ होनी चाहिए। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, है ना, थोड़ा ग्राउंड एक्सरसाइज ही कर लीजिए, भले ही 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, लेकिन वो रेगुलरिटी से होना चाहिए। फिर डिजिटल टाइम जो है, एक फिक्स्ड फ्री डिजिटल टाइम या डिजिटल फ्री जोन, ऐसा कुछ हमको क्रिएट करना होगा लाइफ में, कि जैसे मान लीजिए रात में 10 से 12 या 9 से 11 या जो भी है, आप बिल्कुल फ़ोन को टच नहीं करेंगे, और 10 मिनट माइंडफुल रहना है, एक जगह बैठ के आंखें बंद करके बस सोचना है कि आज दिन भर में हमने क्या क्या किया और क्या क्या सही हो सकता था और बेहतर हो सकता था।
0: सो मैम ने जो चीजें बताई है वो फॉलो कीजिएगा, और उससे भी आपकी ओवर थिंकिंग कम हो सकती है। सो ज्यादा सोचे मत, और भी सोचने के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहे होंगे, वो माइंड में सवाल क्या है बताइए, पूछिए हमसे 9359320080 इस नंबर पर।
2: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHJ सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

0: फरमाइश फरमाइश और फरमाइश आपकी फरमाइश सर आंखों पर आरजे अदनान आपके साथ इन द शो
1: ऑल इज वेल आरजे अदनान का मॉर्निंग शो फ्रेशनेस लाइव रेडियो का फ्लो
0: ऑन एमजीएम 90.8 एफएम एंड आपकी फरमाइशें पूरी करना तो मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज है। तो आज अपने शो में गाने की फरमाइश आई है रोहित कुमार की तरफ से। क्या नाम है, बढ़िया नाम है यार भाई का, रोहित कुमार। सो उनकी तरफ से गाने की फरमाइश है जी वाली।

है, क्या बढ़िया गाना है ना यार, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। सो चलिए फिर रोहित भाई की फरमाइश पर ये गाना प्ले करते हैं। हो जर तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर आम्हाला व्हाट्सअप करून नक्की कळवा 9359320080 या व्हाट्सअप नंबरवर। आणि आता रोहित यांची फरमाइश आपण ऐकूया। स्टे ट्यून विद आरजे अदनान इन द शो ऑल इज वेल।

एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से अपने शहर में भी और पूरे महाराष्ट्र में बदलती हुई नजर आ रही है, वो है होटल इंडस्ट्री वाली। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और जब से तुकाराम मुंडे जी FDA में आए हैं तब से ना तो कार्रवाई शुरू है, और जिस होटल में हाइजीन नहीं था, जहाँ पर बावर्ची वेटर ग्लोव नहीं पहनते थे, वो सब लोग ना तो अब रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बदलाव की तस्वीर अभी हमारे नजरों के सामने है। इसे कहते हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर जब काम करता है तो बदलाव जरूर आता है। अपने शहर में के बिना तो दो चार होटल्स कुछ जो सेंटर सील कर दिए गए थे, क्योंकि वहां पर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे थे, हाइजीन नहीं था, सफाई नहीं थी, कलर यूज कर रहे थे खाने के अंदर, तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो होटल सील हो चुके हैं। और अब FDA ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, अगर किसी भी होटल में जहां पर खाने की चीजें मिलती है, किसी दुकान में आपको कुछ गड़बड़ नजर आए, तो आप डायरेक्टली FDA को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो नंबर गौर से सुनिएगा, काम की चीज है 1800-222-365। सिंपल नंबर है 1800-222-365। पुनः एक बार सांगतो 1800-222-365। आता तीन लैंग्वेज मध्ये मी तुम्हाला नंबर सांगितलं तर हे लक्षात ठेवा, आणि जिथे कुठे तुम्हाला काहीतरी दया कुछ तो गडबड है वाला फील आहे ना, तो तुरंत आप FDA के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। मुझे लगता है कि जिस तरीके से FDA होटल्स पर वगैरह कार्रवाई कर रहा है ना, तो एक बार उन्होंने जो स्टूडेंट्स के लिए मेस होती है ना, तो वहां पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैं भी स्टूडेंट था एक जमाने में, हम भी हॉस्टल पर रहे थे, और हमने खुद देखा था कि मेस में किस तरीके से खाना बनता है। और मैं सभी मेस की नहीं बात कर रहा हूँ, जिन जिन मेस में ऐसा बनता है खाना, अब सभी को बताऊंगा, जो स्टूडेंट से रियलाइज किया होगा कि कितनी हाइजीन मेंटेन होती है। तो एक बार FDA ने मेस के ऊपर भी चेक करना चाहिए कि हाइजीन है या नहीं, तब समझेगा कि कितने मेस सही तरीके से चल रहे हैं और कितने बस चल ही रहे हैं। सो हाँ, ये कॉन्टेक्ट नंबर जो बताया वो याद रखिए और कंप्लेन दर्ज कीजिए। बाकी स्टे ट्यून।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है FGM 90.8 FM।

0: रास्ता होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना,
2: सदम शिवम सुंदरम।
1: लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गाना है और इस गाने के पीछे बड़ा ही मजेदार किस्सा है, वही आज हम जानेंगे। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये टाइटल ट्रैक लता जी ने गाया था। डायरेक्टर राज कपूर से किसी बात पर बहस के बाद लता जी ने गाना गाने से इनकार कर दिया था। राज साहब ने लता जी को बहुत समझाया पर वो माने ही नहीं। तब राज कपूर ने फिल्म के गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी से बात की, जिन्हें लता जी पापा कहती थी। पंडित नरेंद्र शर्मा जी के कहने पर लता जी ने कहा कि मैं स्टूडियो आती हूँ, वो स्टूडियो चली गई। इस गाने में आलाप वगैरह होने के बावजूद भी 6 से 7 मिनट के गाने को लता जी ने एक टेक में रिकॉर्ड करके दे दिया था, यानी कि इतना मुश्किल गाना बस एक टेक में लता मंगेशकर जी ने गाया था। और ये किस्सा लिखा था दीदी और मैं इस किताब के अंदर। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपनी बुक में खुलासा किया था कि ये फिल्म राज कपूर ने लता जी से इंस्पायर होकर लिखी थी और वो लता जी को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। बट इस गाने के पीछे ऐसा एक किस्सा था। चलिए फिर हम एंजॉय करते हैं यही सुपर डुपर हिट गाना सत्यम शिवम सुंदरम। गानों के किस्सों में हम हर दिन ऐसी एक गाने का किस्सा जानेंगे। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, आज है युवा दिवस, यानी कि वो दिन जो हमारे देश के सबसे जबरदस्त जोशीले और मल्टीटास्किंग जनरेशन को सलाम करता है हमारा आज का युवा आरजे अदनान आपके साथ इन द शो। सुबह उठते पहले ब्रश नहीं, पहले इंस्टा स्टोरी, चाय गर्म हो रही हो या क्लास लेट हो रही हो वो सब साइड में रखते हुए पहले इंस्टा की स्टोरी देखता है, रील स्क्रॉल करता है, बाद में फिर रियल लाइफ में काम शुरू करता है। और हाँ, आज का युवा अब जाग गया है, दांत साफ करने से पहले इंस्टा यूज करेगा, मतलब टूथब्रश की सेल्फीज गुड मॉर्निंग कैप्शन के साथ। ये भी एक ट्रेंड है भाई, लेकिन यार सच कहूं तो ये वही युवा है जो एक साथ फोन पर सोशल चेंजेस की पोस्ट भी शेयर करता है और दूसरे तरफ स्टार्टअप आइडियाज भी सर्च करता है। हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस जनरेशन की एक बात लाजवाब है, ये अपने ड्रीम्स के लिए ना मेहनत करता है, खुद के लिए भी और देश के लिए भी। बस एक रिक्वेस्ट है, इंस्टा स्क्रॉल से पहले अपने गोल स्क्रॉल करना सीखो, उसके लिए शुरुआत करो और ट्रेंड के साथ साथ वैल्यूज को भी वायरल करो। तो चलिए फिर आज के इस यूथ डे पर एक नया चैलेंज लेते हैं, अपनी एनर्जी स्क्रीन पर नहीं सीन पर भी लाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज का युवा सिर्फ जागता नहीं है, ये बदलाव भी लाने की पूरी हिम्मत रखता है, समझे। स्टे ट्यून विद RJ Adnan.

वो ताकत है जो देश की दिशा बदल सकती है। आज का दिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आरजे अदनान आपके साथ। आज के यंग इंडिया के पास आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे जरूरी है दिशा और इरादा। सोचिए, अगर हम हर दिन सिर्फ एक घंटे अपने स्किल पर काम करें, सिर्फ एक छोटा सा अच्छा बदलाव लाए, तो साल के अंत तक ना तो हम अपने वर्जन को पहचान पाएंगे। लाइफ की लोडिंग स्क्रीन पर हम खुद कंट्रोल करते हैं। अगर आलस, गुस्सा और नेगेटिविटी रखेंगे तो स्क्रीन हमेशा बफरिंग में अटकी रहेगी, लेकिन अगर पॉजिटिव सोच, मेहनत और हिम्मत डालेंगे तो गेम ऑन हो ही जाएगा। सो आज वादा करते हैं कि स्क्रोलिंग कम, गोलिंग ज्यादा करेंगे, क्योंकि युवाओं की ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं, माइंड में भी होती है। याद रखिएगा, आप ही वो बदलाव है जिसकी इस देश को जरूरत है। तो चलिए, एक कदम अपने लिए, एक कदम समाज के लिए बढ़ाते हैं और एक अलग नजरिए से खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करते हैं। समझे? स्टे ट्यून्ड।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: के साथ।
1: और आज का यूथ सिर्फ ड्रीम्स का नहीं मेम्स का भी मास्टर है, लेकिन एक मेम जो कि बिल्कुल फनी नहीं है वो है बेरोजगार का रेशियो। जी हाँ, इंडिया में ना तो करोड़ों लोग रोज जॉब सर्च करते, लेकिन जॉब मिलना उतना रेयर है जितना कि फ्री का वाईफाई का पासवर्ड मिलना। सोचो, देश में हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते और कॉम्पिटिशन ऐसा जैसे कि IPL की टीम में एंट्री लेनी हो, लेकिन रियलिटी ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कई जगहों पर डबल डिजिट में पहुंच चुका है। यूथ के पास एनर्जी है, आइडियाज है, ड्रीम्स है, लेकिन अगर उन ड्रीम्स को सही डायरेक्शन ना मिले तो ये एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। और ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, नेशनल लॉज भी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिपोर्ट्स में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें भारत में लगभग 20-25% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट दर के रिकॉर्ड पर नजर आता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, शहरी और ग्रामीण भागों में मिलाकर ये बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अपने देश के अंदर नजर आता है। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, सोल्यूशन भी हमारे पास है। स्किल अप करो, सिर्फ डिग्री नहीं डिमांड वैल्यू स्किल सीखो, एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्शन बना, और सबसे जरूरी सिस्टम को डिमांड सप्लाई गैप भरने के लिए ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करना होगा। सो इस यूथ डे पर चलो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम करें और अपॉर्चुनिटीज का प्रोडक्शन बढ़ाएं, बिकॉज हम वो जनरेशन है जो सिर्फ लाइक्स और शेयर नहीं चेंजेस भी कर सकती है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, सुनते रहना RJ अदनान के साथ।

हमारे जैसे यंग लोग ना तो आजकल सुबह उठते सबसे पहले फोन चेक करते हैं, आज का टास्क क्या है, नहीं आज का इंस्टा ट्रेंड क्या है, ये चेक करने के लिए आरजे अदनान आपके साथ है। लेकिन दोस्तों सच में अगर हम युवा कहलाना चाहते हैं तो सिर्फ ट्रेंड फॉलो करने से नहीं, ट्रेंड बनाने से होगा। वो कहते हैं ना, आज का युवा पहले इंस्टा पर रील बनाता है फिर सोचता है कि पढ़ाई कब करनी है। अरे थोड़ा टाइम पढ़ाई, स्किल और खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। हमारे पास ना तो आज के टाइम में इतने मौके हैं, ऑनलाइन कोर्स, स्टार्टअप आइडियाज, फ्रीलांसिंग और हाँ सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज। मतलब अगर मीम बनाना आता है तो ब्रांड के लिए मीम मार्केटिंग भी कर सकते हो। याद रखो लाइफ में लाइफ से ज्यादा जरूरी है लक्ष्य। तो आज के दिन खुद से पूछो, मैं 5 साल के बाद कहाँ देखना चाहता हूँ अपने आप को, और फिर उस तरफ पहला कदम बढ़ाओ। तो दोस्तों आज का मंत्र, कम वेस्ट करो टाइम और ज्यादा इन्वेस्ट करो अपने ड्रीम्स में, क्योंकि असली युवा वही है जो सिर्फ आज नहीं आने वाला कल भी बदल सकता है। तो समझो बात को और सुनते रहो।

0: एक गाने की एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना,
2: सदम शिवम सुंदरम।
1: लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गाना है और इस गाने के पीछे बड़ा ही मजेदार किस्सा है, वही आज हम जानेंगे। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये टाइटल ट्रैक लता जी ने गाया था। डायरेक्टर राज कपूर से किसी बात पर बहस के बाद लता जी ने गाना गाने से इनकार कर दिया था। राज साहब ने लता जी को बहुत समझाया पर वो माने ही नहीं। तब राज कपूर ने फिल्म के गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी से बात की, जिन्हें लता जी पापा कहती थी। पंडित नरेंद्र शर्मा जी के कहने पर लता जी ने कहा कि मैं स्टूडियो आती हूँ, वो स्टूडियो चली गई। इस गाने में आलाप वगैरह होने के बावजूद भी 6 से 7 मिनट के गाने को लता जी ने एक टेक में रिकॉर्ड करके दे दिया था, यानी कि इतना मुश्किल गाना बस एक टेक में लता मंगेशकर जी ने गाया था। और ये किस्सा लिखा था दीदी और मैं इस किताब के अंदर। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपनी बुक में खुलासा किया था कि ये फिल्म राज कपूर ने लता जी से इंस्पायर होकर लिखी थी और वो लता जी को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। बट इस गाने के पीछे ऐसा एक किस्सा था। चलिए फिर हम एंजॉय करते हैं यही सुपर डुपर हिट गाना सत्यम शिवम सुंदरम। गानों के किस्सों में हम हर दिन ऐसी एक गाने का किस्सा जानेंगे। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: सुना है आजकल भेड़िया लोगों का कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक बस चल रहा है,
2: बाकी सब ठीक बस चल रहा है,
3: तेरा भी बोलना
1: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?

की मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 94 नेटिव एफएम रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तुम बात है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

हेलो एवरीवन, कुक एंड बेक विद राजश्री अग्रवाल। इस शो में मैं राजश्री अग्रवाल, डायरेक्टर एंड फाउंडर एचडी कुकिंग एंड बेकिंग क्लास, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं इडली, डोसा, उत्तप्पा, ये चीज़ें आपको कैसे बनाना है। इडली, डोसा, उत्तप्पा ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि ये हमारा डाइजेशन जो है वो आसान करते हैं और पेट को भी हमारे स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि ये दाल और चावल से बने हुए होते हैं। तो देखो, इडली और डोसा ये आसानी से पच जाता है हमें, है ना। इसके जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है, सो इससे क्या होता है ना, पाचन तंत्र पे हमारे जोर ही पढ़ने देती है, और इसमें प्रोबायोटिक्स अच्छे मात्रा में होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज है वो बनते हैं, जो हमारी गट हेल्थ है वो सुधारते हैं। सो इडली डोसा जब भी आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, लंच में खा सकते हो, या तो फिर आप इसे डिनर में भी खा सकते हो, जब भी आपका मन करे आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसमें कैलोरीज जो है वो कम होती है, भाप पे बनती है इडली जो है, मतलब ऑयल का यूज ज़्यादा नहीं होता है, और डोसा जो है ये बहुत कम तेल में बन जाता है। जो भी लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी वेट जो है वो मेंटेन रखने के लिए बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद में दाल और चावल का जो मिश्रण होता है इसके अंदर, इसके कारण हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलते हैं। सो जो हमारा बैलेंस डाइट, हम जिसे बोलते हैं संतुलित पोषण, वो भी हमें इससे मिलेगा। तो आप इसे पूरे फैमिली को दे सकते हो, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप इसे टिफिन में भी दे सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ना कि इसका बैटर जो है वो आपको कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या लगने वाला है, हमें यहाँ पे उड़द दाल भी लगने वाली है और चावल भी लगने वाले हैं। अब कई बार क्या होता है ना, 1:4 रेशो लेते हैं, मतलब क्या कि अगर आपने 1 कप अगर आप उड़द दाल लेते हो तो 4 कप ले लेना है आपको चावल। चावल जो थोड़े से सस्ते वाले आते हैं ना, वो चावल अगर आप यूज करते हो तो बैटर जो है वो बहुत अच्छा बनता है, और उसकी इडली और डोसा भी बहुत अच्छे से बनती है। अगर आपके पास जो अवेलेबल है वो भी आप ले रहे हो तब भी चलेगा, बट उसका जो टेस्ट है और जो उसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से होता है। इसके लिए सजेस्ट किया कि थोड़े से हल्के वाले चावल अगर यूज करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो, 1:4 का भी रेशो ले सकते हो, या तो 1.5 कप आपको लेना है उड़द की दाल और 3 कप लेना है आपको इडली का रवा। इडली रवा जो है ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, किसी भी ग्रोसरी शॉप से आप खरीद सकते हो, तो वो भी आप ले सकते हो, या तो फिर चावल भी आप ले सकते हो। चावल अगर डाल रहे हो तो 1:4 रेशो लेना है, और इडली रवा अगर यूज कर रहे हो तो 1.5 कप को आपको 3 कप लेना है, 1:2 का रेशो रहेगा, मतलब आधा उड़द दाल ले लिया और आधा ले लेना है आपने चावल, ठीक है। इस तरह से अभी आपको क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं ना, उड़द दाल और चावल साथ में भिगो देते हैं, या तो फिर उड़द दाल भी ले रहे हो और चावल का रवा भी ले रहे हो तो इसे साथ में भिगो देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, आपको उड़द दाल को भी अलग से भिगाना है और इडली रवा जो है इसे भी आपको अलग से भिगोना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करोगे ना, 1.5 कप ले लोगे आप उड़द दाल और इसे दो से तीन घंटे के लिए आपको अच्छे से भिगो देना है, ठीक है। अब जब ये अच्छे से 2 से 3 घंटे हो जाए, इसके बाद में आपको इसे अच्छे से वॉश कर लेना है 2 से 3 पानी से, ठीक है। इसके बाद में आपको ये पानी को निकाल लेना है और इस दाल को आपको ग्राइंडर में डालकर अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक पीस लेना है। याद रहे, उड़द दाल जो है ये स्मूथ कंसिस्टेंसी आने तक आपको पीसना है, और इडली रवा जो है ये आपको दरदरा है वैसे ही डालना है। अगर आपने चावल लिए हैं तो चावल को आपको दरदरा रखना है, और उड़द दाल जो है इसको आपको स्मूथ कंसिस्टेंसी में पीस लेना है। इसीलिए बोला है कि आपको इसे साथ में नहीं भिगोना है और पीसना भी साथ में नहीं है, अलग अलग चीज़ें करके आपको पीसना है।
उड़द दाल को आप अलग से पीसोगे और चावल को आप अलग से पीसोगे, लेकिन हम यहाँ पे जो इडली रवा है उससे बना रहे हैं। ठीक है, हमने इसे अच्छे से पीस लिया, ग्राइंडर में से हमने इसे अच्छे से स्मूथ कंसिस्टेंसी में ब्लेंड कर लिया। अब इसको आपको एक अलग से बाउल में रख लेना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा अगर पीसा नहीं जा रहा है उड़द दाल जब आप पीस रहे हो और अच्छे से पीसा नहीं जा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर सकते हो। देखो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो ऐड नहीं करना है, इससे आपका बैटर जो है वो पतला हो जाएगा, है ना। बहुत कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे पानी का यूज़ करोगे। अब इसे आपको एक बाउल में निकाल लेना है और इसे साइड में रख देना है। अब अलग से बाउल में आपको 3 कप इडली का रवा लेना है और इसको भी 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। जब तक कि साफ पानी नहीं निकलने लगता है तब तक आप इसको वॉश कर लोगे। अब आपको क्या करना है, इडली का रवा पानी में से निकाल कर जो उड़द दाल हमने एक बाउल में ले रखी थी पीस कर उसके अंदर इसको मिक्स करना है। मिश्रण अच्छे से हाथ से फेंटते हुए, आप विस्क का भी यूज कर सकते हो, एक जैसा मिश्रण होने तक आपको इसको विस्क करना है और अच्छे से ढक कर आपको इसको कवर करना है। 7 से 8 घंटे के लिए आपको इसे फर्मेंट करने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अभी जब आप इसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ोगे तो याद रहे कि थोड़ी सी गर्म जगह हो, है ना। गर्म जगह है तो वहाँ पे ये फर्मेंट अच्छे से हो जाता है और 8 घंटों में हो जाएगा। लेकिन अगर वो जगह गर्म नहीं है तो हो सकता है आपको 8 से 10 घंटे भी उसको लग जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका वेदर कैसा है वहाँ का, तो उस हिसाब से आपको 8 से 10 घंटे इसे फर्मेंट करने के लिए छोड़ देना है। अगर मान लो ये फर्मेंट नहीं हुआ है तो जब तक ये फर्मेंट नहीं होता है तब तक हमें इसे रहने देना है बैटर को वैसे ही, क्योंकि अगर आप इसका इडली या डोसा बनाने जाओगे वो उतना अच्छे से नहीं बनेगा अगर आपका आटा जो है ये प्रॉपरली फर्मेंट नहीं हुआ है। तो हमने जितना एक बाउल में आपने जैसे छोड़ा था तो मान के चलो आधा बाउल अगर आपका बैटर था तो ये फूल के ना डबल हो जाता है पूरा बाउल, कभी कभी तो डबल से भी ज़्यादा हो जाता है फर्मेंट होने के बाद। तो आपको दिखता है कि मिश्रण फूल के ऊपर आ गया है ना, हल्का हो गया है। इस तरह से जब आपका मिश्रण हो जाता है उसके बाद ही आपको इसका इडली डोसा उत्तपम

जो भी बनाना है वो बनाना है, इसलिए आटा फर्मेंट होना बहुत जरूरी है। अभी और कुछ टिप्स है जिसकी वजह से कि आपका आटा जो है ये अच्छी तरह से बने, ठीक है। तो देखो प्रॉपर मेजरमेंट जो है ये मैंने आपको बता दिया है। अभी जैसे मैंने बोला कि जब आप उड़द दाल या चावल अगर पीस कर बना रहे हो तो आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। तो अगर पानी यूज़ कर रहे हो तो उस समय आपको ठंडे पानी का यूज़ करना है, ठीक है। अभी सेकेंड थिंग, जब आप इसे फर्मेंट करने के लिए रखोगे तो गर्म जगह पे आपको इसको रखना है। गर्मे का कोई ऐसी जगह ढूंढना है जहाँ पे गर्म स्थान हो। इसके बाद में बैटर का जो गाढ़ापन है ये आपको मेंटेन रखना होता है। अगर मैंने बोला कि जैसे आपका बैटर जो है इसकी कंसिस्टेंसी अगर लूज हो गई है तो क्या होगा ना कि आपकी इडली जो है वो प्रॉपर से नहीं बनेगी, हार्ड बनेगी, है ना, सख्त बनेगी। वो बैटर अगर पतला हो जाता है तो इडली जो है थोड़ी सी सख्त बनती है। तो ये भी ना कि बैटर भी अलग अलग तरह के होते हैं। देखो इडली के लिए हमें थोड़ा सा थिक बैटर लगता है, डोसा बना रहे हो इसके लिए हमें लूज कंसिस्टेंसी वाला बैटर लगता है, अगर आप उत्तपम बना रहे हो तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हल्का सा मीडियम गाढ़ा बैटर लगता है। तो ये भी कंसिस्टेंसी जो है ये अलग अलग, अगर आपको पहले से ही पता है कि आप इडली बनाने वाले हो तो उस समय आपने एकदम से गाढ़ा बैटर बनाना है। अगर आप उस दिन मान लो आपको पता है कि आप आज डोसा बनाने वाले हो उस समय आपको लूज कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है, और जिस समय आप अगर उत्तपम बना रहे हो तो आपको मीडियम लूज कंसिस्टेंसी, मतलब ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा लूज कंसिस्टेंसी वाला भी नहीं चाहिए। तो मीडियम तरह का बैटर हमें उत्तपम के लिए लगेगा। तो इस तरह से परफेक्ट बैटर जो है आप बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो मेजरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें, इसके लिए मेजरमेंट जो है वो आपको मेजर करके ही डालना है, कभी भी याद रखो, ओके। अभी और एक चीज़ है, जब आप इसे भिगो रहे हो तो आप और एक चीज़ इसके अंदर मिक्स कर सकते हो जो है मेथी दाना। मेथी दाना भी आपने 1 से 1.5 टेबल स्पून अगर डाला तो ये भी बैटर बहुत अच्छा बनता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जब आप भिगो रहे हो उड़द दाल चावल को, उसी समय आपको एक अलग से कटोरी में जो मेथी दाने हैं वो भिगो देना है, और जब हम पीस रहे हैं तब चावल के साथ में या उड़द दाल के साथ में डालकर आप इसे पीस सकते हो। एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी में आपको इसे पीसना है। और जब हमने उड़द दाल चावल इनका मिश्रण जब मिक्स किया तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक चीज याद रखोगे, जब मिश्रण को फेंट रहे हो ना तो हाथ से अगर फेंटते हो ना तो इसमें ना हवा बहुत अच्छे से भरती है, तो मिश्रण जो है वो राइज होने में हमारा मदद करेगा फिर, अगर आप इसे अच्छे से हाथ से फेंटते हो तो, ठीक है। उड़द दाल को बिल्कुल चिकना पीसना है कि एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी आना चाहिए, और चावल को हल्का दरदरा पीसना है। और अगर चावल का रवा यूज कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं, वो ऑलरेडी दरदरा होता है, ठीक है। कभी भी याद रखो फर्मेंटेशन से पहले आपको नमक नहीं डालना है। नमक हमेशा जब हम बना रहे हैं, है ना, उससे हम इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, उस समय हमें नमक उसमें ऐड करना होता है। और एक बार जब खमीर उठ जाए उसके बाद आप जितने हल्के हाथों से मिश्रण फेंटोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, है ना। नहीं तो जो हवा भरी है आपने जोर जोर से फेंट दिया तो हवा जो है वो निकल जाएगी और आपकी इडली जो है वो बिल्कुल स्पंज नहीं बनेगी। सो इसके लिए नमक डालने के बाद जब खमीर उठ जाए तो मिश्रण को एकदम हल्के हाथों से फेंटना है ताकि उसमें की जो हवा है वो भरी रहे, निकले ना, ठीक है। अभी देखो बैटर हमारा रेडी है। आप इस बैटर से अलग अलग रेसिपीज जो है वो बना सकते हो, बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको इसकी इडली अगर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इडली बनाने के लिए बैटर आपने अच्छे से फर्मेंट कर लिया, इसके बाद में आपने क्या करना है ना, इसके अंदर जब बना रहे हो अपने नमक ऐड कर देना है अपने टेस्ट के अनुसार, ठीक है। उसके बाद में इसे हल्की हाथों से मिक्स कर लिया, अब आपको इडली मोल्ड ले लेना है। इसे क्या करोगे ना, आप ऑयल या घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लोगे ताकि जब इडली बने वो इसके अंदर चिपके ना, ठीक है। उसके बाद में आपने इसे कुकर में भी लगा सकते हो या तो स्टीमर में भी लगा सकते हो, या इडली का स्पेशल अगर आपके पास में स्टीमर है तो उसपे भी आप इसे पका सकते हो, ठीक है। तो क्या करोगे ना, स्टीमर में थोड़ा सा पानी डाल देना है नीचे आपने, और आधा सा नींबू का एक स्लाइस आपको इसके अंदर डाल देना है।
इसके बाद में प्लेट्स को अच्छे से ग्रीस कर

है, इसके बाद आप स्टीमर को ओपन करोगे। निकालने के बाद जो है ना, तुरंत से इसे डीमोल्ड नहीं करना है। कभी भी अगर आप तुरंत से करते हो तो बहुत सी बार क्या होता है ना कि इडली चिपकी हुई होती है या तो फिर अच्छे से क्लियर नहीं निकलती है। तो क्या करना है ना, प्लेट्स को आप निकाल कर पहले छोड़ दो खुली हवा में, और एक 2 से 3 मिनट के बाद में फिर आप इसे अनमोल्ड कीजिए। इससे क्या होगा ना, इडली बहुत आसानी से निकल कर आ जाएगी। और एक किसी भी बर्तन में आप इसे निकाल लीजिए। सेम एज इट इज आप दूसरा वाला पॉट भी ऐसे ही लगा सकते हो। इस तरह से आपने सारी इडली जो है ये आपको बना लेना है। अब फ्रेश बनी हुई इडली आप या तो कोकोनट चटनी के साथ में सर्व कर सकते हो, या तो सांभर के साथ में भी सर्व कर सकते हो। दोनों भी अगर बनाते हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी हम देखते हैं ना कि डोसा कैसे बनाना है। देखो, जो हमने बैटर बना रखा है वही बैटर हमें लेना है। बस याद रहे कि इडली से थोड़ा सा पतला बैटर हमें चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा भी पतला नहीं करना है। पर बैटर डालने के बाद में आप आसानी से इसे स्प्रेड कर सको, इतना ही पतली कंसिस्टेंसी आपको इसकी रखना है। तो जैसे फर्मेंट कर लिया आटा, इसके बाद में आपने इसमें नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी डालकर बैटर को जो है ये आपने लूज कंसिस्टेंसी में बना लिया। अब क्या करना है, आपको एक तवा हीट करना है। तवा जैसे ही हीट हो जाता है तो थोड़ा सा ब्रश से आप इसके ऊपर क्या करोगे ना, ऑयल अच्छे से स्प्रेड कर दोगे सब तरफ से। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो बैटर है ये आपको एक चम्मच की सहायता से तवे पर डालना है और अंदर से बाहर की तरफ फैलाते हुए आपको डोसा जो है ये बना लेना है। ठीक है, बहुत जोर से नहीं घिसना है ताकि आपका जो डोसा है वो चिपक ना जाए। एकदम हल्के हाथों से आपको बैटर को जो है वो स्प्रेड करना है ताकि डोसा तवे पर चिपके ना। अगर आपके पास में आयरन का तवा है तो वही आपने यूज करना है, ज्यादा बेटर आयरन के तवे पे डोसा जो है वो बनेगा। तो आपके पास जो है वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन अच्छे से आसानी से निकल कर आता है अगर आपका तवा जो है वो आयरन का है तो। इसके बाद में क्या करोगे ना, ऊपर से भी हल्का सा ऑयल और थोड़ा सा जो भी आप ऑयल बटर जो भी यूज कर रहे हो वो आप फिर से डाल दोगे और इसे तवे पर अच्छे से सेक कर आपको निकाल लेना है। अगर आपको बीच में कोई स्टफिंग भरनी है, जैसे आलू की सब्जी या कुछ शेजवान सॉस लगाना है, तो अभी आप लगा सकते हो। जब हमने बैटर फैला दिया, नीचे की साइड से अच्छे से हो गया है, उसके बाद में ऊपर की साइड भी पूरी ड्राई हो जानी चाहिए, है ना, आटा कहीं से भी नहीं रहना चाहिए। इस तरह से अगर आपका डोसा हो गया है तवे पे, उसके बाद में आप इसके ऊपर शेजवान सॉस लगा सकते हो। अगर आपको आलू की सब्जी बीच में भरनी है वो आप भर सकते हो, और फिर हल्के से इसको रोल कर लेना है और निकाल कर तुरंत ही आपको इसे सर्व करना होता है। डोसा बनने के बाद में आपको इसे रखना नहीं है, तुरंत से आपको इसे सर्व कर देना है, क्योंकि बाद में ये नरम पड़ जाएगा अगर आप इसे 5 मिनट भी वैसे ही रखते हो तो। तो कभी भी डोसा जब सर्व होता है तो गर्म ही आपको सर्व करना होता है। आप इसे किसी भी कोकोनट चटनी के साथ में, सांभर के साथ में भी सर्व कर सकते हो। देखो, डोसा ना अच्छे से तभी बनता है जब आप इसको प्रॉपर तरीके से बनाओगे। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि आपको जो बैटर है इसमें मेथी दाना डालना है, इसीलिए बोला है कि आपका जो डोसे का कलर है इससे थोड़ा सुनहरा आता है। ठीक है, तो जब भी डोसा बना रहे हो तो बैटर में आपको मेथी दाना याद से डालना है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि नमक जो है ये फर्मेंटेशन से पहले नहीं ऐड करोगे, फर्मेंटेशन के बाद आप ऐड करोगे। क्योंकि अगर नमक आपने फर्मेंटेशन के पहले अगर ऐड कर दिया तो इससे प्रॉपर फर्मेंटेशन नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमेशा नमक जो है ये आपको फर्मेंटेशन के बाद ही ऐड करना है। अभी तीसरी चीज जो है ये आपकी है बैटर की कंसिस्टेंसी। घोल आपका ऐसा होना चाहिए जो आप चम्मच से आसानी से जब तवे पे डाल रहे हो तो वो आसानी से गिरना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है और बहुत पतला भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो मीडियम कंसिस्टेंसी, रिबन कंसिस्टेंसी जिसको बोलेगे ना, उस तरह की कंसिस्टेंसी जो है ये आपके बैटर की होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा बैटर अगर होता है ना तो इससे आपका डोसा जो है ये च्यूई हो जाता है, है ना। तो इस तरह से अगर आपको नहीं बनाना है, क्रिस्पी बनाना है, तो मेक श्योर आपका बैटर जो है ये प्रॉपर रहे। अभी हर डोसे के बाद में याद रखना है आपको तवा जो है ये साफ कर लेना है। ठीक है, तो साफ

करने के लिए क्या करना है, आपको आधा कटा हुआ प्याज का यूज करना है, ठीक है। इससे सीजनिंग जो है ना वो अच्छे से हो जाता है तवे को। सो कभी भी जब सीजनिंग करो तो आधा कटा हुआ प्याज लो और उससे ही आपको तवे को सीजनिंग जो है वो करना है। इससे क्या होगा ना कि अगला डोसा जब आप डालोगे इसके ऊपर तवे पर तो वो चिपकेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद में आपको तवे का टेम्परेचर जो है वो हमेशा मेंटेन करके रखना है। देखो होता क्या है, अगर आपका तवा बहुत ज्यादा गर्म हुआ है तो इससे क्या होगा ना कि जैसे ही आपने उसके ऊपर बैटर डाला वो तुरंत से वहीं पर ही सिकुड़ जाएगा। बहुत ज्यादा अगर आपका तवा गर्म है तो क्या होगा ना कि बैटर फैलेगा ही नहीं, और अगर बैटर फैलेगा नहीं तो आपका डोसा जो है वो मोटा बन जाएगा, वो डोसा बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपका टेम्परेचर कंट्रोल जो है ये प्रॉपर होना चाहिए, तवा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अगर इन केस ऐसा हो जाता है तो आपको वेट करना है कि कब उसका टेम्परेचर जो है ये नॉर्मल हो जाए, और नॉर्मल होने के बाद में ही आपने उसके ऊपर दूसरा डोसा जो है वो डाल देना है। अभी देखो लोहे का तवा अगर आप यूज करते हो तो वो ज्यादा बेटर है। और एक चीज कर सकते हो, एक से दो उसके ऊपर पहले पराठे बना लो। इससे क्या होता है ना, आपका तवा जो अच्छे से सीजन हो जाता है, और इसके बाद फिर आप अगर इसके ऊपर डोसे बनाते हो तो वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएंगे। और एक चीज याद रखना है, कभी भी डोसा निकालते समय किनारे से पहले आपको निकालने हैं, उसके बाद में बीच में जाओगे। इस तरह से अगर आप निकालते हो ना डोसे को तो डोसा जो है वो अच्छे से निकल कर आएगा, कहीं चिपकेगा भी नहीं। तो देखो इस तरह से अगर डोसा बनाते हो ना तो बहुत अच्छा निकल कर आएगा। बस याद रखना है कि आपको डोसे को धीमी आंच पर कभी भी नहीं होने देना है, इससे क्रिस्पीनेस कभी आएगा ही नहीं। एक बार आपने बैटर जो है वो फैला दिया है, उसके बाद में गैस की जो फ्लेम है आपको इसे फुल ही रखना है, निकालने तक गैस की फ्लेम आपको फुल ही रखना है। अगर आपने गैस की फ्लेम कर दी तो क्रिस्पीनेस पूरा चला जाएगा। तो इस तरह से डोसा जो है ये आपने बना लेना है, और गर्म ही आपको इसे सर्व करना है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको इसका उत्तपम बनाना है तो उत्तपम बनाने के लिए आप क्या करोगे ना, जो हमारा बैटर है इसमें आपने नमक ऐड किया फर्मेंट होने के बाद में, और अब आपको थोड़ा सा पानी ऐड करके मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर जो है वो बना लेना है। इसको हमें ना तो थिक बैटर चाहिए और ना ही थोड़ा सा लूज कंसिस्टेंसी वाला। जैसे हमने इडली को थिक बैटर यूज किया, डोसा जो है वो हमने थोड़ी सी लूज कंसिस्टेंसी वाला बैटर यूज किया। अभी दोनों के बीच वाला, मतलब थोड़ा सा मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर जो है वो हमें उत्तपम के लिए यूज करना है, ठीक है। तो बैटर हमने बना लिया है, नमक डालकर हल्के हाथों से इसे फेंट लिया है ताकि इसकी जो हवा है वो निकली नहीं है, हवा एज इट इज भरी हुई रहना चाहिए, तो जो भी चीज आप बना रहे हो वो प्रॉपर से बनेगी। अभी इसके लिए क्या होता है ना, थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है आपको उत्तपम बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, प्याज ले लेना है और आपको इसे फाइनली चॉप कर लेना है, बारीक कट कर लेना है। इसके बाद सेम टमाटर को भी आपको बारीक कट कर लेना है। उसके बाद में हरी मिर्च देखो, बच्चे अगर है तो थोड़ी सी मोटी मोटी कट करोगे, या नहीं भी डाली तो भी चलेगा। अगर बड़े है तो फिर आप थोड़ा सा बारीक भी फाइनली चॉप भी आप कर सकते हो। तो हरी मिर्च जो है इसे भी आपको कट कर लेना है। इसके बाद में हरा धनिया भी आपको फाइनली चॉप जो है वो करके रख देना है। इस तरह से प्रिपरेशन जो है ये हमने कर लिया है। अब आपको क्या करना है, तवा गरम करना है और तवे को अच्छे से सीजनिंग कर लेना है। इसके बाद में हल्का सा गरम, देखो बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, कच्चे से इसके ऊपर बैटर डालना है। बैटर डालते ही आपको इसको फैला देना है। अभी देखो डोसे के जितना पतला हमें इसे नहीं फैलाना है, ओके, थोड़ा मोटा ही रहने देना है। सभी ने उत्तपम खाया ही होगा, जिस तरह से उसका एक पाव से आधा इंच का आपको फैला देना है बैटर। इसके बाद में आपको गैस की फ्लेम कम ही रखना है, और तुरंत से आपको क्या करना है, हमने जो भी ये वेजिटेबल्स कट किए हैं, प्याज हमने कट किया है, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये समान तरीके से सभी ओर से अच्छे से फैला देना है। इसके बाद में आप गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बैटर तुरंत से डालते ही अगर सूख जाता है तो जो आपने सब्जियां डाली है वो उसके ऊपर चिपकेगी नहीं, जब आप उसे टर्न करोगे तो वो निकल जाएगी।
इसके लिए कि जैसे ही आपने बैटर डाला तुरंत से गैस की फ्लेम को मीडियम से लो पे कर दोगे, फिर सब्जियां डालोगे और फिर से गैस की फ्लेम को सब्जियां जैसे ही डालना होगी उसके ऊपर चिपकी, उसके बाद में गैस की फ्लेम को आपको मीडियम पे कर देना है और फिर इसे अच्छे से सुनहरा होने देना है। एक साइड जैसे हो जाता है तो आपको इसकी साइड से फिर से तेल डाल देना है और फिर किनारों से बीच में की तरफ जाते हुए इसे निकाल लेना है, टर्न करना है और दूसरे भी ओर से इसे अच्छे से होने देना है। जैसे ही हो जाती है फिर आपको इसे निकाल लेना है। देखो याद रहे कि दूसरी ओर से इतना भी नहीं बनाना है, आपको सीखना है कि जो हमने वेजिटेबल्स डाले हैं कि वो बर्न हो जाए, ओके, जस्ट वो अच्छे से कुक हो जाए। कभी कभी क्रिस्पी भी अच्छे लगते हैं, हाँ, तो थोड़ा ज़्यादा देर भी अगर आपने होने दिया तो भी अच्छा लगे, क्योंकि बैटर जो है वो ऐसे स्मूथ लगता है और उसके ऊपर की अगर वेजिटेबल्स आप क्रिस्पी करते हो तो वो उत्तपम ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आपको क्रिस्पी करना है तो थोड़ा सा होने दीजिए उसे, लेकिन याद रहे कि वो जलना नहीं चाहिए। अगर जलते हैं तो टेस्ट भी खराब होगा और जब हम उसे सर्व करते हैं तो वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। सो इस तरह से आपको अपने हिसाब से आपकी गैस की फ्लेम जो है वो एडजस्ट करनी है। अभी देखो उत्तपम जब बना रहे हो तो इसके कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बैटर जो है ये हमारा रिबन कंसिस्टेंसी में लेना है, ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद में फर्मेंटेशन जो है ये प्रॉपर से हुआ होना चाहिए, खमीर उठे उसके बाद में ही आपको उत्तपम जो है ये बनाना है, ठीक है। तवे का तापमान जो है ये मध्यम तेज होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म तवे पर बैटर जो है ये चिपक जाता है, चाहिए बहुत ज्यादा गर्म तवे पर बैटर जो है ये चिपक जाता है। फैलाने का तरीका बहुत मैटर करता है, हल्के हाथों से बीच में से बाहर की ओर फैलाना है और याद रखना है थोड़ा सा मोटा ही रहना देना है। जिस तरह से हमारा डोसा फैलाया था उस तरह से हमें बैटर को नहीं फैलाना है। इसके बाद में सब्जियां जो है ये बारीक कटी हुई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अगर मोटाई में आप अगर इसे कट करते हो तो वो पलटते समय निकल जाती है, ठीक है। सब्जियां जैसे ही आपने उत्तपम पे डाली इसके बाद में उसे स्पैचुला से हल्का सा प्रेस किया तो सब्जियां जो है ये जगह पे ही चिपक जाती है, वेजिटेबल्स आपके, ठीक है। उसके बाद में उत्तपम जो है ये हमेशा आपको मीडियम आंच पर ही पकाना है। ढककर अगर पकाते हो तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इससे क्या होगा ना कि अंदर का जो बैटर है वो कच्चा नहीं रहेगा। बहुत से बार ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी मोटी परत डालते हैं ना जब उत्तपम बनाते हैं, तो अगर आपने उसे ढककर नहीं पकाया, खुले पर ही पकने दिया, तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अंदर का बैटर जो है वो कच्चा रह जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, इसे ढककर पकाना है ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए, ओके। इसके बाद और एक चीज कि अगर आप तेल की जगह पर यहाँ पे मक्खन या घी का यूज करते हो तो इसका टेस्ट जो है ये बहुत बढ़ जाता है और इसकी खुशबू जो है वो दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप उत्तपम बना रहे हो तो मक्खन या घी का यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आप जब इसे पलटते हो तो पलटने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है आपको, एक साइड से अच्छे से हो जाए इसके बाद ही दूसरी साइड आपको टर्न करना है। मतलब क्या होता है ना, जब आप बैटर डाल देते हो तो ऊपर की साइड जो है ये पूरी तरह से सूखी हुई होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको टर्न कर सकते हो। दूसरी एक चीज आप क्या देख सकते हो कि छोटे छोटे इसके ऊपर ऐसे छेद मतलब बबल्स दिखते हैं, तो उस तरह से भी अगर हो जाए तो फिर आप इसे पलट सकते हो। इस तरह से देख कर ही आपको इसे पलटना है, इसमें आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अभी आप इसमें और एक ट्विस्ट दे सकते हो जिसे हम बोलेंगे पोडियम मसाला ट्विस्ट। इससे क्या होता है ना कि इसका स्वाद जो है ये 10 गुना बढ़ जाता है। गन पाउडर अगर आपको पता हो तो आप गन पाउडर का यूज इसके अंदर कर सकते हो बेहतर स्वाद के लिए। सब्जियां जब आप डाल दो, डालने के बाद में ऊपर से थोड़ा सा गन पाउडर आपने स्प्रिंकल कर देना है, हल्का सा गन पाउडर छिड़क दोगे और इससे क्या होता है ना, जब आप इसे खाओगे तो इसका टेस्ट जो है ये 10 गुना बेहतर हो जाता है। तो देखो इस तरह से इडली, डोसा और उत्तपम जो है वो आप बना सकते हो।
और इसका टेस्ट जो है अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो अलग अलग चीजें यूज करके जो हमने अभी देखा है। तो इस सारी रेसिपीज को आप अपने घर पर

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
2: हम राह की दूरियां, फना हो सभी दूरियां।
3: रंगभूमीचा कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा चिकिषा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्य प्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भाण, सवाल जवाब, MHG सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्य प्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिकिषा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGM 90.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

मन पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

बाकी सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है, तेरा भी बोलना मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू।

0: ड्रैगन।
1: तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई।
0: प्रमोशन हो गया, कैप्टन बन गया हूँ।

0: आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: Kajal.
1: Wait. I think we should go that way.
0: ये तो खराब है.
1: ये मेरा lucky charm है और ये मुझे हमेशा right direction देता है. Sometimes in life you just have to let it go और उसी flow में सही मंजिल मिलती है.
0: मतलब तुम एक compass से अपनी जिंदगी decide करती हो.

0: की एक कहानी होती है, किस्सा होता है, एक मीनिंग होता है, तो इसे कहते हैं सॉन्ग डिकोडिंग। द सॉन्ग डिकोडिंग विद मी यानी कि आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
1: ये गाना तो आपने सुना ही होगा ना, लता मंगेशकर जी की आवाज में यह गाना है और इस गाने के पीछे बड़ा ही मजेदार किस्सा है, वही आज हम जानेंगे। आरजे अदनान आपके साथ है ऑन MGM 90.8 FM। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का ये टाइटल ट्रैक लता जी ने गाया था। डायरेक्टर राज कपूर से किसी बात पर बहस के बाद लता जी ने गाना गाने से इनकार कर दिया था। राज साहब ने लता जी को बहुत समझाया पर वो माने ही नहीं। तब राज कपूर ने फिल्म के गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा जी से बात की, जिन्हें लता जी पापा कहती थी। पंडित नरेंद्र शर्मा जी के कहने पर लता जी ने कहा कि मैं स्टूडियो आती हूँ, वो स्टूडियो चली गई। इस गाने में आलाप वगैरह होने के बावजूद भी 6 से 7 मिनट के गाने को लता जी ने एक टेक में रिकॉर्ड करके दे दिया था, यानी कि इतना मुश्किल गाना बस एक टेक में लता मंगेशकर जी ने गाया था। और ये किस्सा लिखा था दीदी और मैं इस किताब के अंदर। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपनी बुक में खुलासा किया था कि ये फिल्म राज कपूर ने लता जी से इंस्पायर होकर लिखी थी और वो लता जी को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। बट इस गाने के पीछे ऐसा एक किस्सा था। चलिए फिर हम एंजॉय करते हैं यही सुपर डुपर हिट गाना सत्यम शिवम सुंदरम। गानों के किस्सों में हम हर दिन ऐसी एक गाने का किस्सा जानेंगे। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, आज है युवा दिवस, यानी कि वो दिन जो हमारे देश के सबसे जबरदस्त जोशीले और मल्टीटास्किंग जनरेशन को सलाम करता है। हमारा आज का युवा आरजे अदनान आपके साथ इन द शो। सुबह उठते पहले ब्रश नहीं, पहले इंस्टा स्टोरी, चाय गर्म हो रही हो या क्लास लेट हो रही हो, वो सब साइड में रखते हुए पहले इंस्टा की स्टोरी देखता है, रील स्क्रॉल करता है, बाद में फिर रियल लाइफ में काम शुरू करता है। और हाँ, आज का युवा अब जाग गया है, दांत साफ करने से पहले इंस्टा यूज करेगा, मतलब टूथब्रश की सेल्फीज गुड मॉर्निंग कैप्शन के साथ। ये भी एक ट्रेंड है भाई, लेकिन यार सच कहूं तो ये वही युवा है जो एक साथ फोन पर सोशल चेंजेस की पोस्ट भी शेयर करता है और दूसरे तरफ स्टार्टअप आइडियाज भी सर्च करता है। हम थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन इस जनरेशन की एक बात लाजवाब है, ये अपने ड्रीम्स के लिए ना मेहनत करता है, खुद के लिए भी और देश के लिए भी। बस एक रिक्वेस्ट है, इंस्टा स्क्रॉल से पहले अपने गोल स्क्रॉल करना सीखो, उसके लिए शुरुआत करो और ट्रेंड के साथ साथ वैल्यूज को भी वायरल करो। तो चलिए फिर आज के इस यूथ डे पर एक नया चैलेंज लेते हैं, अपनी एनर्जी स्क्रीन पर नहीं सीन पर भी लाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज का युवा सिर्फ जागता नहीं है, ये बदलाव भी लाने की पूरी हिम्मत रखता है, समझे। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान।

यूथ डे वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर वो ताकत है जो देश की दिशा बदल सकती है। आज का दिन स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आरजे अदनान आपके साथ है। आज के यंग इंडिया के पास आइडिया है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन सबसे जरूरी है दिशा और इरादा। सोचिए, अगर हम हर दिन सिर्फ एक घंटे अपने स्किल पर काम करें, सिर्फ एक छोटा सा अच्छा बदलाव लाए, तो साल के अंत तक ना तो हम अपने वर्जन को पहचान पाएंगे। लाइफ की लोडिंग स्क्रीन पर हम खुद कंट्रोल करते हैं। अगर अलस, गुस्सा और नेगेटिविटी रखेंगे तो स्क्रीन हमेशा बफरिंग में अटकी रहेगी, लेकिन अगर पॉजिटिव सोच, मेहनत और हिम्मत डालेंगे तो गेम ऑन हो ही जाएगा। सो आज वादा करते हैं कि स्क्रोलिंग कम, गोलिंग ज्यादा करेंगे, क्योंकि युवाओं की ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं, माइंड में भी होती है। याद रखिएगा, आप ही वो बदलाव है जिसकी इस देश को जरूरत है। तो चलिए, एक कदम अपने लिए, एक कदम समाज के लिए बढ़ाते हैं और एक अलग नजरिए से खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करते हैं। समझे? स्टे ट्यून्ड।

चाहे कॉलेज में हो या घर पर, देश हो या विदेश, अब आपके फेवरेट आरजे और सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू सिर्फ एक क्लिक दूर। कहानियाँ जो दिल छू जाए, बातें जो जिंदगी बदल दे, सब मिलेगा एमजीएम 94 एफएम रेडियो ऐप पर। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए एमजीएम 94 एफएम, साथ है तो बात है।

0: आज का यूथ सिर्फ ड्रीम्स का नहीं है, मेम्स का भी मास्टर है। लेकिन एक मेम जो कि बिल्कुल फनी नहीं है, वो है बेरोजगार का रेशियो। जी हाँ, इंडिया में ना तो करोड़ों लोग रोज जॉब सर्च करते, लेकिन जॉब मिलना उतना रेयर है जितना कि फ्री का वाईफाई का पासवर्ड मिलना। सोचो, देश में हर साल लाखों ग्रेजुएट निकलते और कॉम्पिटिशन ऐसा जैसे कि आईपीएल की टीम में एंट्री लेनी हो। लेकिन रियलिटी ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कई जगहों पर डबल डिजिट में पहुंच चुका है। यूथ के पास एनर्जी है, आइडियाज है, ड्रीम्स है, लेकिन अगर उन ड्रीम्स को सही डायरेक्शन ना मिले तो ये एनर्जी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। और ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, नेशनल लॉस भी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिपोर्ट्स में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि जिसमें भारत में लगभग 20-25% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट दर के रिकॉर्ड पर नजर आता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, शहरी और ग्रामीण भागों में मिलाकर ये बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अपने देश के अंदर नजर आता है। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, सोल्यूशन भी हमारे पास है। स्किल अप करो, सिर्फ डिग्री नहीं डिमांड वैल्यू स्किल सीखो, एंटरप्रेन्योरशिप को ऑप्शन बना और सबसे जरूरी सिस्टम को डिमांड सप्लाई गैप भरने के लिए ग्राउंड लेवल से काम करना शुरू करना होगा। सो इस यूथ डे पर चलो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कम करें और अपॉर्चुनिटीज का प्रोडक्शन बढ़ाएं, बिकॉज हम वो जनरेशन है जो सिर्फ लाइक्स और शेयर नहीं चेंजेस भी कर सकती है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, सुनते रहना आरजी अदनान के साथ।
1: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे, मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भाण, सवाल जवाब, एमएचजी सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह एमजीएम परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

जो भी है दिल से आई है और दिल तक जाएगी। दिल से रे, दिल से रे। लेकर आ रही है एक ऐसा शो जहां हर एहसास मिलेगा आपको दिल से। तो सुनना न भूले मंडे से सैटरडे शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन MGM 90.8 FM पर, क्योंकि बात जब दिल की हो तो सुन।

तो ब्रांड के लिए मीम मार्केटिंग भी कर सकते हो। याद रखो, लाइफ में लाइफ से ज्यादा जरूरी है लक्ष्य। तो आज के दिन खुद से पूछो, मैं 5 साल के बाद कहां देखना चाहता हूं अपने आप को, और फिर उस तरफ पहला कदम बढ़ाओ। तो दोस्तों, आज का मंत्र, कम वेस्ट करो टाइम और ज्यादा इन्वेस्ट करो अपने ड्रीम्स में, क्योंकि असली युवा वही है जो सिर्फ आज नहीं आने वाला कल भी बदल सकता है। तो समझो बात को और सुनते रहो।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

बात तो बहुत अच्छी तरीके से अपने शहर में भी और पूरे महाराष्ट्र में बदलते हुए नजर आ रही है, वो है होटल इंडस्ट्री वाली। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM, RJ अदनान आपके साथ है। और जब से तुकाराम मुंडे जी FDA में आए हैं, तब से ना तो कार्रवाई शुरू है। और जिस होटल में हाइजीन नहीं था, जहाँ पर बावर्ची वेटर ग्लोव नहीं पहनते थे, वो सब लोग ना तो अब रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बदलाव की तस्वीर अभी हमारे नजरों के सामने है। तो इसे कहते हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर जब काम करता है तो बदलाव जरूर आता है। अपने शहर में भी ना तो दो चार होटल्स कुछ जो सेंटर सील कर दिए गए थे, क्योंकि वहां पर रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे थे, हाइजीन नहीं था, सफाई नहीं थी, कलर यूज कर रहे थे खाने के अंदर। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो होटल सील हो चुके हैं। और अब FDA ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर किसी भी होटल में जहां पर खाने की चीजें मिलती है, किसी दुकान में आपको कुछ गड़बड़ नजर आए, तो आप डायरेक्टली FDA को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनके टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। तो नंबर गौर से सुनिएगा, काम की चीज है, 1800-222-365। सिंपल नंबर है 1800-222-365। पुनः एकदा सांगतो, 1800-222-365। आता तीन लैंग्वेज मध्ये मी तुम्हाला नंबर सांगितलं, तर हे लक्षात ठेवा। आणि जिथे कुठे तुम्हाला काहीतरी दया कुछ तो गडबड है वाला फील आहे ना, तो तुरंत आप FDA के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से FDA होटल्स पर वगैरह कार्रवाई कर रहा है ना, तो एक बार उन्होंने जो स्टूडेंट्स के लिए मेस होती है ना, तो वहां पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैं भी स्टूडेंट था एक जमाने में, हम भी हॉस्टल पर रहे थे और हमने खुद देखा था कि मेस में किस तरीके से खाना बनता है। और मैं सभी मेस की नहीं बात कर रहा हूँ, जिन जिन मेस में ऐसा बनता है खाना, अब सभी को बताऊंगा जो स्टूडेंट से रियलाइज किया होगा कि कितनी हाइजीन मेंटेन होती है। तो एक बार FDA ने मेस के ऊपर भी चेक करना चाहिए कि हाइजीन है या नहीं, तब समझेगा कि कितने मेस सही तरीके से चल रहे हैं और कितने बस चल ही रहे हैं। सो हाँ, ये कॉन्टेक्ट नंबर जो बताया वो याद रखिए और कंप्लेन दर्ज कीजिए। बाकी स्टे ट्यून्ड।

पसंदीदा आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MG 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है FGM 90.8 FM।

का आवाज आपके अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए MGN 94.8 FM रेडियो का मोबाइल ऐप और सुनिए हमारे खास इंटरव्यू कहीं भी कभी भी।